0: सभी शहीद मौतेबर, मगर हुसैन एक है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।

0: कायनात रोती है, निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।
2: हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: करबला की खाक इस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशाए बतूल।
3: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

பிபி ரெண்டாவன் மென் நின்ற கந்தியொய் பிரச்சேன் சலஞ்சி சக்கீனா சதே சோந்தியொய் பாபா ஜடே கோ சதேவான் கையா सतावीह अठावीह ॾींहं खां बाद जॾहिं बाबे जो अवसर मिलियोसि सीने ते रखी थी चवे बाबा ॾिस जेके तो दुर पारायां हा तुंहिंजा कातिल लहे विया ॿियो

ये करोड़ हा इंसान दे तो अली की जा तेरे गम में है गिरिया। इनकी करबला मंजिल है हथेलियों पर दिल झेल कर हर एक मुश्किल एक सदा का

यूरोपी रान जंग में अमेरिका जो साथ न डिनो नेटो का मायूस आया। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली सहकार न कर असा के मदद की जरूरत न हुई, पर यूरोपी मुल्क सहकार करना तो सुठो लगे। हा अमेरिका ईरान का वे फर्क से जंग खटी है। ईरान हर इं गाल मनी रो है जहां अमेरिका चाहे तो। ईरान आबन हुरमज में टूल टैक्स या इंश्योरेंस की रकम वसूल न कंदो। अमरीकी सदर ट्रंप जो नेटो चीफ मार्क रोटी से गड मीडिया से गाल सदर ट्रंप ईरान के फंड्स जारी करण की तरदीद कन्दे है तो ईरान के मंजमंद फंड जारी नाहन कया। असा के ईरान के पैसा डेण की जरूरत ना। ईरान के अमरीकी आबादगर का खुराक खरीद करनी पवी ए पैसा मंजमंद ईरानी फंड्स में काटिया वा। ईरान अमरीका की रोज तब्दील थन्द बयान से खदशा जाहिर कर छा। ईरानी परी खाते तर्जुमान इस्माइल बाघाई है तो एमओयू बाबत अमरीका जहा तकरारी बयान सामू अची रहा है। अड़ा बयान ईरानी अवाम के अदम इतमाद से घट कर में मददगार साबित ना। अमरीका के एमओयू के वाजे मतन की उबतर तशरीन का पासो कर घुर्जे। अमरीका के पैं जिम्मेवार वायदन के पूरा कर घुर्जे। कराची में जाल के कत्ल केस में गिरफ्तार थियल शख्स पुलिस के तहवील में फौत। पुलिस मौजूद तैमूरिया थाने से जवाबदार मोहम्मद खान खिलाफ जाल जो कत्ल केस दाखिल थियल है। पुलिस कार्रवाई करे जवाबदार मोहम्मद खान गिरफ्तार करे जोहराबाद जांच पुलिस हवाले किया हो। पूछा गाछा दौरान जवाबदार की तबियत खराब थी वही जिन सब कें अस्पताल मुंतकिल किया वे जिते उन्हें दम दई छो। आई कराची के इलाके सरजानी टाउन में जाल ए मुड़स विच तलाक मामले तां चिकटाण तां जवाबदार पंजे दहन सालन के मासूम पुट के तशद्दुद करे मारे छो। पुलिस मौजूब जाल मुड़स विच में खुला बात चिकटाण हलंदड़ हुई। गुजरियल ढी शाम जो बारड़े हैदर के संस मामो वालद अजहर के घर छड़े वो हो जिते जवाबदार अजहर ए संस भाव सुल्तान बारड़े हैदर के तशद्दुद जो निशानो बनाए कतल कर छो। पुलिस बिन्हीं जवाबदार गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर छी है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आमा बुधी रया आयो GAFM नेटवर्क ते महरमुल हराम जी खुसूसी ट्रांसमिशन।

बाहर हुई है आया, बाहर हुई है आया, अली है घर से रवा, सुनेगा आज जहां शहादतों की अदा, नबी है पाक बसर और परिंदे नौह कुना, पुकार जिन्नो मलक ए हादी ये इंसान, नमाज घर में पढ़े ए मौला, ए मौला, कदम अली के बढ़े, कदम अली के बढ़े और फलक ये सुर्ख हुआ।

अली रुकू में गए और अदा किया सजदा, कहा अली ने जो सुभान रब्बी अल आला, खुदा के दुश्मन ने अली पर वार किया, लहू में डूब गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सहर से पहले ही सूरज गुरूब होने लगा, ये आशिक माबूद वो इनका आशिक था, किसी ने यूं न किया ये इश्क का दावा।

0: जॾहिं करबला में फौजी यज़ीद मौला हुसैन के घेरे छॾियो
1: त पोइ नवासाए रसूल फरमाइन था
0: ऐ ज़ालिमो तव्हां खे औलाद मोहम्मद सां एतिरी ही नफ़रत आहे त छॾियो
1: मां पंहिंजे बचड़नि खे वठी सिंध हलियो वञा
0: छो जो सिंध वारा अली जे औलाद सां मोहब्बत कनि था सिंधी टोपी अजरक पाए रसूल जे अहल बैत जो एहतराम कनि था
2: हर दिल जी सदा या हुसैन।

0: सभी शहीद मौतेबर मगर हुसैन एक है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।

0: जॾहिं करबला में फौजी यज़ीद मौला हुसैन के घेरे छॾियो
1: त पोइ नवासाए रसूल फरमाइन था
0: ऐ ज़ालिमो तव्हांखे औलाद मोहम्मद सां एतिरी ही नफ़रत आहे त छॾियो
1: मां पंहिंजे बचड़नि खे वठी सिंध हलियो वञा
0: छो जो सिंध वारा अली जे औलाद सां मोहब्बत कनि था सिंधी टोपी अजरक पाए रसूल जे अहल बैत जो एहतराम कनि था।

0: वेनेजुएला में ज़लज़ले तबाही मचाए छी समय इमारतों पर 32 जणा फौत 1000 का जख्मी किरियल इमारतों के मलबे के हटाने वो ऑपरेशन जारी क्राकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद कर क्राकस में एक बे पुठियां आयल जल्जले के बिन झटकन वन इमारतों के मिट्टी के ढेर में तब्दील कर छो जल्जले की शिदत 7.2 / 7.5 की रिकॉर्ड कई वही परे मीडिया मौजूद जल्जले अलोड़ा कोलंबिया की राजधानी बगोटा तक महसूस किया वह यूरोप ईरान जंग में अमरीका जो साथ न डनो नेटो का मायूस आया बरतानिया जर्मनी फ्रांस स्पेन इटली सहकार न कयो असा के मदद की जरूरत न हुई पर यूरोपी मुल्कन सहकार कन हाथ सुठो लगे हा अमरीका ईरान का वरी फर्क से जंग खटी है ईरान अपना हुरमज में टूल टैक्स या इंश्योरेंस की रकम वसूल न कंदो अमरीकी सदर ट्रंप जो नेटो चीफ मार्क रोटी से गड मीडिया से गाल सदर ट्रंप ईरान के फंड जारी करने की तरदीद कदे है ईरान के मंजमन फंड जारी नाहन कया असा के ईरान के पैसा डण की जरूरत ना ईरान के अमरीकी आबादकरण का खुराक खड़नी पवी पैसा मंजमन ईरानी फंड्स में काटा वा ईरान अमरीका की रोज तब्दील बयान के खदशा जाहिर कर छा ईरानी परी खातिर तर्जुमान इस्माइल बाकई है एमओयू बाबत अमरीका जा तकरारी बयान सामू अची रहा अड़ा बयान ईरानी आवाम के एतमाद से घट कंदा अमरीका के एमओयू की वाजे मतन की उबड़ तशरीन का पासो करण घुर्जे रोड़ी में तारीखी शमागुल मातम बाद 9 डालन वाले ताजिया के कुलो डण दौरान साबु साजन सब चार अजादार फौत केतरा ही बेहोश फौत थे चैन अजादार में बिन जणन की सुणप कनपुरवासी इमरान शेख और नवीद शेख तौर कई वही रोड़ी में रात देर से कदीमी 9 डालन वालों मातमी ताजियो शमागुल की रस्म बाद शाह इराक इमाम बारगाह में बरामद थो मंदिर तरफ रवान दवा बिन शहर में भी नाई मोहरम जहां मातमी जुलूस बरामद सिक्योरिटी का इंतजाम इंतहाई सख्त आए कराची के इलाके सजाणी टाउन में जाल ए मुड़स विच में तलाक वाले मामले तां छिकताण जवाबदार 5-10 वरन के मासूम पुट के तशद्दुद करे मारे छो पुलिस मूजिब जाल मुड़स विच में खुला बाद छिकताण हलंदड़ हुई गुजरियल ॾींहुं शाम जो बाड़े हैदर केस मामू वालिद अज़र जे घर छॾे वियो हो जिथे जवाबदार अज़र खां भाउ सुल्तान बाड़े हैदर खे तशद्दुद जो निशानो बणाए कतल कयो पुलिस ॿिन्ही जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे मामले जी जांच शुरू करे छॾी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: आमा बुधी रहा आयो GAFM नेटवर्क ते महरमुल हराम जी खुसूसी ट्रांसमिशन।

0: जॾहिं करबला में फौजी यज़ीद मौला हुसैन के घेरे छॾियो
1: त पोइ नवासाए रसूल फरमाइन था
0: ऐ ज़ालिमो तव्हां खे औलाद मोहम्मद सां एतिरी ही नफ़रत आहे त छॾियो
1: मां पंहिंजे बचड़नि खे वठी सिंध हलियो वञा छो जो सिंध वारा
0: अली जे औलाद सां मोहब्बत कनि था सिंधी टोपी अजरक पाए रसूल जे अहल बैत जो एहतराम कनि था
2: हर दिल जी सदा या हुसैन।

0: रोती है, निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में।

0: सभी शहीद मौतेबर मगर हुसैन एक है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशियात।

0: हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।

0: आज़ादारो ॾहीं मुहर्रम जो ॾींहुं आहे, इमाम हुसैन जो को न बचियो आहे। हिकु दफ़ा जनाब सैयदा जो लाल मख़्तल में आयो ऐं हिकिड़ो आवाज़ बुलंद कयईं, हल मिन नासिरिन यंसुरना, को आहे जेको मूं हुसैन ग़रीब जी मदद करे। जेॾी महिल फज़ाउनि में इमाम हुसैन जो इहो आवाज़ आयो, ख़ैमनि में मातम थियो, ख़ैमनि में कोहराम मचियो। इमाम हुसैन ख़ैमे ॾांहुं आया ऐं सवाल कयो, बीबियो, ओ बीबियो, मातम जो सबबु छा आहे? केॾी महिल हिकिड़ी
1: पाकिस्तान दुनिया में अमन ॾींदड़ मुल्क बणिजी वियो आहे। इस्लामाबाद ईरान अमरीका जंग में ट्राके जो किरदार अदा करे खिते में अमन खे यकीनी बणायो। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अलाह पाकिस्तान खां कम वरितो ऐं वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहुं राति कम कयो। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम तरफ़ वधी रहियो आहे। वेचो भर अमुन ॾांहुं वधी रहियो आहे। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। अमरीकी सदर ट्रम्प चयो त अमरीकी फ़ौजी ताक़त सभु बहिरी ऐं फिज़ाई सहूलतनि खां महरूम थी वियो आहे। तेहरान सां गुज़िरियल हफ़्ते तारीख़ी मुआहिदो कयो आहे जेको कंहिं बि अमरीकी सदर न कयो हो। रोड़ीअ में तारीख़ी शम गुल मातम बाद नव डालनि वारे ताज़ीअ खे कुलो ॾियण दौरान साहबु साजण सभु चार आज़ादार फोत, केतिरा ई बेहोश। पहुतल चयन अदारनि मां ॿिनि ॼणनि जी सुञाणप कनकोट वासी इमरान शेख ऐं नवीद शेख तौर कई वई। रोड़ीअ में राति देर सां कदीमी नोडलनि वारो मातमी ताज़ियो शमा गुल जी रस्म बाद शाह इराक इमाम बारगाह मां बरामद थियो। मंज़िल तरफ़ रवान दवान सिक्योरिटी जा इंतज़ाम इंताही सख़्त, पुलिस सां गॾु रेंजर्स बि मुक़ररु थियल। सिंध समेत समूरे मुल्क में नव मुहर्रम हराम जे मौके ते करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण जो सिलसिलो जारी। नवाब शाह मीरपुर खां सखर लालकाणे डिवीज़न में अज़ादारी जारी सबीलूं बि लॻायूं वयूं। सांगड़, उमरकोट, थरपाकर, नौशहरोज ऐं ॿियनि शहरनि में या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद। शिकारपुर, जेकमबाद, कंबर, शहदादकोट, घोटकी, खैरपुर में सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया। अज़ादारनि पारां नुआखवानी ऐं मातम करे करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण जो सिलसिलो जारी। सिक्योरिटी सख़्त। ऐं टंड मस्ती वेझो ॿिनि धुरनि में मामूली ॻाल्हि तां जहिड़ो लठियूं लॻण सबबि पीरसन कटल शेख तैयब कब्रस्तान अंदरि वरलनि जे कबरुनि दयाल नारे जा ॿारनि जे ॿिनि धुरनि में जहिड़ो थियो। जहिड़े दौरान लठियूं लॻण सबबि 60 साला अली दाद नारे जो मारिजी वियो। पुलिस वोट पीर मोहम्मद नारे जो वासी पीरसन जो लाश इस्पताल मुंतकिल कयो।
2: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
4: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

मुनकर नकी, अब तो न भेजा करो सवाल यार काबले गौर तवज्जो, मुनकर नकीर अब तो न भेजा करो सवाल।

0: सभी शहीद मौतेबर, मगर हुसैन एक है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

0: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सभी शहीद मौतबर, मगर हुसैन एक है।
2: आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशियात।

0: अमा बुधी रहा आयो जी एफएम नेटवर्क ते महरमुल हराम जी खुसूसी ट्रांसमिशन
1: हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ जी एफ एम 88 नेट।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जिला में जल्जले तबाही मचाए छी, सवे इमारतों पर बटे जणन जे फौत थियण जी तस्दीक, हजारे मलबे हेठां थकल। किरियल इमारतों जे मलबे के हटाइण वारो ऑपरेशन जारी, कराकस जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बंद कयो वियो। जिला में एक बे पुठियां आयल जल्जले जे ॿिन झटकन वॾनि इमारतुनि खे मिटी जो ढेर में तब्दील करे छॾियो। जल्जले जी शिदत 7.2 ऐं 7.5 जी रिकॉर्ड कई वई। जिला जी वक़्ती सदर मुल्क में एमरजेंसी लागू करे छॾी।

विचोवर अमुन ॾांहुं वधी रहियो आहे। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त अमरीकी फ़ौज जी ताक़त सबबि बहिरी ऐं फिज़ाई सहूलतनि खां महरूम थी वियो आहे। तेहरान तहरान सां गुज़िरियल हफ़्ते तारीख़ी मुआदो कयो आहे जेको कंहिं बि अमरीकी सदर न कयो हो। आपना हुरमज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो। आपना हुरमज़ मां गुज़र ईरानी बहरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो। ईरान जे पासदान इनकलाब चयो आहे त आपना हुरमज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कयो वेंदो। अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो त अमरीका तय थियल मफ़ामत ते अमल करे।

करबला जे शहीदन खे भेटा पेश करण लाइ सिंध में अज़ादारी जारी। रोड़ी मां बरामद थियल नव नलनि वारो ताज़ियो शमा गुल मंडी ख़बर पहुतल। अज़ादार कुझ देर आराम बाद आख़िरी मंज़िल तरफ़ सफ़र शुरू कंदा। वफ़ाक़ी गर वज़ीर मोहसिन नक़वी रोड़ी पहुची जलूस जी सिक्योरिटी जो जाइज़ो वरितो। कराची थटो सजावल बदीन टोनो मोहम्मद ख़ान हैदराबाद मटियारी टंडो अलैयार मीरपुर खास सिरपारकर उमरकोट सांगड़ नवाबशाह नसरपुर जामशरो दादू खैरपुर सखर घोटकी जगमबाद कशमोर शिकारपुर लाड़काणो कंबर जिले के नंढन वन शहरों में अज़ादारी जारी। हर तरफ या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद सिक्योरिटी सख्त पुलिस सां गॾु रेंजर्स बि मुक़रर थियल।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीन नियाज में।

0: आंख रोती है, निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।

0: सभी शहीद मौतबर मगर हुसैन एक है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशियात।

आमा बुधी रया आयो जी एफ एम नेटवर्क ते महरमुल हराम जी खुसूसी ट्रांसमिशन।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
3: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

0: लाइव।
1: आखिर जो किरदार अदा करे खिते में अमन के यकीनी बढ़ाओ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चाहे था पाकिस्तान जिम्मेवार एटमी मुल्क है। अमरीका ईरान जंग में अला पाकिस्तान का कम वरतो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जंग के खात्मे लाए दिन रात कम किया है। हाँ मामला दुरुस्त रुख में वही रहा है। मुल्क में मुआशी इस्तकाम तरफ वधी रहा है। वेचोबर दां अमन दां वधी रहा है। ईरान कदें भी एटमी हथियार हासिल न करे सकंदो। अमरीकी सदर ट्रंप चाहे त अमरीकी फौज ताकत सबब बहरी ए फिजाई सहूलतन का महरूम थी वो है। तेहरान से गुजल हफ्ते तारीखी मुआहदो किया है जो कें भी अमरीकी सदर न किया हो। आबना हुरमज में गुजरण लाय नो रस्तो कबूल न हों। आबना हुरमज में गुजर ईरानी बहरिया के तय कल रस्तन ताई थी सके तो। ईरान के पासदान इनकलाब चाहे तो आबना हुरमज में गुजरण लाय नो रस्तो कबूल न किया वो अड़ो को भी कदम खतरनाक साबित थी सके तो। ईरानी परे तर्जमान इस्माइल बाकई चो तो अमरीका तय थियल मफामत से अमल करे। कर्बला के शहीदन के भेटा पेश कर सिंध में अजादारी जारी। रोड़ी में बरामद थियल नोडलन वो ताजियो शमा गुल मंडी खबर खां मंजिल तरफ रवान दवा। वफाकी गुरु वजीर मोहसिन नकवी रोड़ी पहुंची जलूस की सिक्योरिटी को जायजो वरतो। कराची ठटो सजावल बदीन टंड मोहम्मद खान हैदराबाद मठियाई टंडोलयार मीरपुर खास थरपारकर उमरकोट सांकड़ नवाबशाह नुसरफोज जामचुरो दादू खैरपुर सक्कर घोटकी जकमबाद कश्मोर शिकारपुर लाड़कानो ए कंबर जिले के नंडन वन शहर में आजादारी जारी। हर तरफ या हुसैन जो सदाऊं सिक्योरिटी सख्त पुलिस संघर्ष रेंजर्स पर मुकर थियल। रोड़ी में तारीखी शमगुल मातम दौरान साहब साजन सबब चार आजादार फौज फौत थियल चैन जन टन जन की सुणप थी वही। कंदपुर वासी इमरान शेख नवीद शेख ए खैरपुर वासी नेमतुल्ला उर्फ काली सुमर के नाल से कई हुई। एक जणे की सुणप न थी। इंतजामिया मूजब पे गर्मी सबब आजादार फौत थे।

निकाहबाद रुख़सती न थियण ते बि औरत हक़मर जी हक़दार आहे। लाहौर हाईकोर्ट हक़मर बाबति दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। अदालत थियण बाद रुख़सती न थियण ते बि औरत हक़मर जी हक़दार आहे। निकाहनामे में हक़मर जा तफ़सील न हूंदो त मुतालबे ते अदा कयो वेंदो। खुला औरत जो मुस्तक़िल शरई ऐं कानूनी हक़ आहे। खुला लाइ मुड़ुस जी रज़ामंदी ज़रूरी आहे। खुला बाद इज़त मुकमल थियण ते निकाह बि करे सघे थी।

मदे जी भरसां दखण थाणे के एडिशनल SHO जो तशदो थे लाश ते गोठ तराई वासी उबैदुल्ला मीरानी जो लाश अस्पताल मुंतकल ड्यूटी डॉक्टर चवणा है त एलकार जिस्म जे तशद जा निशान आहिनि ज़हर सबब संदसि मौत थियो आहे दखण पुलिस चयो आहे त वाक़े जी हर रुख खां जांच करियूं पिया टणो मस्तीवे जो कब्रिस्तान में वरड़न के कब्रन से दुआ घुरण लायल नारे जा बिरादरी के बिंदुरन में झेड़ो लथियों लगन सबब पीरचंद अलीदाद नारे जो कतल अहमदाद नारे जो जख्मी शेख तैयब कब्रिस्तान अंदर वरड़न के कब्र से आयल नारे जा बिरादरी बिंदुरन में झेड़ो थियो गोठ पीरमोहम्मद नारे जो वासी पीरसन जो लाश अस्पताल मुंतकिल चकवे जो जतोई प्रादेश बिंदुरन में पुराने तकरार से झेड़ो एक जणो कतल गोठ मजार कुर्सी में करीमण गुलाम नबी जतोई के बिंदुरन में झेड़ो थियो फायरिंग के नतीजे में गोली लगन सब बशीर जतोई मारी वे में फायरिंग जो सिलसिलो जारी बलूचिस्तान के डेरा मुराद जमारी में कतल थे टिन जणन के वारसन जो जकम बाद में एहतजाज कौमी शाहरा से लाश रखी धरणो गुजरियल ढी जवाबदार इसलावा शाहजवाणी पंजे जाल कुंज सस मदिया सोहरे यासीन वगन के कतल कर हो खैरपुर भरसा बारह वर नीगर नांग के कखण सब फौत कोट बाला खान बिरोई में नांग मसूद अली पुट गुलाम अली बिरोई के कखियो नीगर के गंभीर जोगी हालत में अस्पताल पहुंचाया वे जिते उन दम दिनों नीगर जुमर जरूरी कार्रवाई बाद पार्सन हवाले आयसा मारे में नए कोर्ट में अगवा थे व्यापारी हरेश कुमार मेशवारी की बाजियाबी ला एहतजाज मेशवारी प्रादी तरफा एहतजाज रैली कड़ी स्टेशन चौक से धरणो हयो रैली में शहर के सियासी समाजी अगवान व्यापारी शख्सियत वरियंग में शिरकत कई अगवान हरेश कुमार के नौ कोर्ट में अगवा कर वो व्यापारी बादरी में बेचैनी पकड़ियल आए मुगवी हरेश कुमार के फौरी तौर से बाजियाब कराए बेचैनी खत्म कई वहीं

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आमा बुधी रहा आयो जीए एफएम नेटवर्क ते महरमुल हराम जी खुसूसी ट्रांसमिशन।

दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा। गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंस

जब हम बैन उल हरमैन पहुँचते हैं तो जागता है दिल में ये एहसास, एक तरफ रोज़ाए हुसैन, एक तरफ रोज़ाए अब्बास, ये जन्नत नहीं है तो और क्या है।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद
2: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।

चल कर वो सफर। दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा, गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
2: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।
3: हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सभी शहीद मौतेबर मगर हुसैन एक है।
2: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।

0: आए नाथ रोती है, निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

खूनली ताही सरे करबो बला बिखरा है वो हुसैन अकबर वो असगर वो अलम वाला है गूंजता आज भी ज़ैनब का यही खुतबा है इब्न मरजान।

0: सभी शहीद मौतेबर, मगर हुसैन एक है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।
2: हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।
3: इमाम सज्जाद बाजारन में पत्थर खाई दे खाई दे, हर मोड़ दे चमदो रहो। माँ मोहम्मद मुस्तफा जो फर्जंद है, माँ अली मुर्तजा जो फर्जंद है, माँ फातिमा जहरा जो फर्जंद है। ऐ बेपरदा बीबियों, तमाम जे रसूल जो नियाणियों आईं, मुझे रगुन में तमाम जे रसूल जो रत हले तो। हाँ, माँ वो गरीब आया जिनके बाबा के टिंडियन जो बुखियो प्यासो करे करबला जी मैदान में शहीद कयो वियो। मुझे अखियन जी अगियां मुझे बाबा जी लाश ते घोड़ा दौड़ाया पिया, असा सैयदन जा खेमा साड़िया पिया, असा के बेपरदा करे रस्सियों में कैद बनाए, बाजारों

0: ते चमदो रहो
1: मां मोहम्मद मुस्तफा जो फर्जंद हां मां अली मुर्तजा जो फर्जंद हां मां फातिमा ज़हरा जो फर्जंद हां
0: ऐ बेपरदा बीबियों तवा जे रसूल जो नियाणी आईन मुझे रगन में तवा जे रसूल जो रत हले तो हां मां वो गरीब हां जे जे बाबा के टिंडियन जो भुख्यो प्यासो करे करबला जी मैदान में शहीद करे बियो मुझे अखिन जी अग्या मुझे बाबा जी लाश ते घोड़ा दौड़ाया पा असा सैयदन जा खेमा साड़ा पा असा की बेपरदा करे रस्सियों में कैद बढ़ाए बाजारों में फिराया पो।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इन जिला में जल्जले तबाही मचाए छी। सवे इमारतों पर फौतन जो अंग वधीक 167 थी वयो। हजारे मलबे हेठां दबियल फौतन जो अंग 10,000 ताईं पहुचण जो खदशो। किरियल इमारतन जे मलबे घटाइण वारो ऑपरेशन जारी। क्राकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कयो वियो। वेनेज़ुएला में हिक ॿिए पुठियां आयल ज़लज़ले जे ॿिनि झटकनि वरी इमारतुनि खे मिटी जे ढेर में तब्दील करे छॾियो। ज़लज़ले जी शिदत 7.2 ऐं 7.5 रिकॉर्ड कई वई। वेनेज़ुएला जे वक़्ती सदर मुल्क में एमरजेंसी लागू करे छॾी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे मूजिबि वेनेज़ुएला में ज़लज़ले सबबि 10,000 खां 1,00,000 ताईं मौत थी सघनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां वेनेज़ुएला में ज़लज़ले सबबि जानी ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार। सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान मुश्किल वक़्त में वेनेज़ुएला जी आवाम सां हमदर्दी जो इज़हार करे थो। मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान मुतासिरन सां गॾु आहे। पाकिस्तान खे अकेलो करण जी कोशिश कंदड़ पाण अकेला थी पिया आहिनि। पाकिस्तान दुनिया में अमन ॾींदड़ मुल्क बणिजी पियो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अलाह पाक पाकिस्तान खां कम वरितो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहं राति कम कयो। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि। मुल्क में मुआशी इस्तक़ाम तरफ़ वधी रहियो आहे। वेझो पर अमुन ॾांहुं वधी रहियो आहे। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फ़ौजी ताक़त सबबि बहिरी ऐं फिज़ाई सहूलतनि खां महरूम थी वियो आहे। तेहरान सां गुज़िरियल हफ़्ते तारीख़ी मुआहिदो कयो आहे जेको कंहिं बि अमरीकी सदर न कयो हो। आपने हुरमज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो। आपने हुरमज़ मां गुज़र ईरानी बहरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो। ईरान जे पासदान इनकलाब चयो आहे त आपने हुरमज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कंदासीं। अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी पंडित तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त अमरीका तय थियल मफ़ामत ते अमल करे।

करबला के शहीदन के भेटा पेश करण लाए सिंध में आजादारी जारी। रोड़ी में बरामद थियल नव नरन वो ताजियो शमा गुलमंडी खबर का मंजिल तरफ रवाना। वफाकी गुरु वजीर मोहसिन नकवी रोड़ी पहुंची जलूस की सिक्योरिटी के जायजो वरतो। कराची छठो सिटावल बदीन टुंडो मोहम्मद खान हैदराबाद मटियारी टुंडो लयार मीरपुर खास सरपाकर उमरकोट सांगर नवाबचा नशरफो जामशरो दादू खैरपुर सक्कर घोटकी जकमबाद कश्मोर शिकारपुर लाड़कानो कंबर जिले के नंदन शहरों में आजादारी जारी। हर तरफ या हुसैन जो सदाऊं बुलंद सिक्योरिटी सख्त पुलिस संग रेंजर्स भी मुकर थियल।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
2: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

बोल अली बोल क्या खबर किसको पता कितना है अनमोल अली बेखबर अक्ल के मीजान पे मत तौल अली अपनी सांसों में वजीफों में तू बस बोल अली बैठ मौला के फकीरों में जरा बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली

0: सभी शहीद मौतबर मगर हुसैन एक है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

पिंजला में ज़लज़ले तबाही मचाए छॾी। सवे इमारतूं पर फौतन जो अंग वधीक 167 थी वियो। हज़ारे मलबे हेठां दबियल फौतन जो अंग 10,000 ताईं पहुचण जो ख़दशो। किरियल इमारतनि जे मलबे घटाइण वारो ऑपरेशन जारी। क्राकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंदि कयो वियो। पिंजला में हिकु ॿिए पुठियां आयल ज़लज़ले जे ॿिनि झटकनि वारनि इमारतुनि खे मिटी जे ढेर में तब्दील करे छॾियो। ज़लज़ले जी शिदत 7.2 ऐं 7.5 रिकॉर्ड कई वई। वंदर जे वक़्ती सदर मुल्क में एमरजेंसी लागू करे छॾी। अमरीकी जूलॉजिकल सर्वे मूजिब पिंजला में ज़लज़ले सबबि 10,000 खां 1,00,000 ताईं मौत थी सघनि थी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां पिंजला में ज़लज़ले सबबि जानी ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार। सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान मुश्किल वक़्त में पिंजला जी आवाम सां हमदर्दी जो इज़हार करे थो। मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान मुतासिरनि सां गॾु आहे। पाकिस्तान खे अकेलो करण जी कोशिश कंदड़ पाण अकेला थी विया आहिनि। पाकिस्तान दुनिया में अमन ॾींदड़ मुल्क बणिजी पियो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चयो आहे पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अलाह पाक पाकिस्तान खां कम वरितो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहं राति कम कयो। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि। मुल्क में मुआशी इस्तेकाम तरफ़ वधी रहियो आहे। वेझो बर अमुन ॾांहुं वधी रहियो आहे। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त अमरीकी फ़ौजी ताक़त सबबि बहिरी ऐं फिज़ाई सहूलतनि खां महरूम थी वियो आहे। तेहरान सां गुज़िरियल हफ़्ते तारीख़ी मुआदो कयो आहे जेको कंहिं बि अमरीकी सदर न कयो हो। आपने हुरमज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो। आपने हुरमज़ मां गुज़र ईरानी बहरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो। ईरान जे पासदान इनकलाब चयो आहे त आपने हुरमज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कंदासीं। अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त अमरीका तय थियल मफ़ामत ते अमल करे।

बोल अली बोल क्या खबर किसको पता कितना है अनमोल अली बेखबर अक्ल के मीजान पे मत तौल अली अपनी सांसों में वजीफों में तू बस बोल अली बैठ मौला के फकीरों में जरा बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मौत थी सघन था, अमरीकी सदर पारा इदारन के वेंजुएला जे तकड़ी मदद करण जी हिदायत। सदर आसिफ अली सरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारा वेंजुएला में जलजले सबब जानी ए माली नुकसान ते अफसोस जो इज़हार। सदर आसिफ अली सरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान मुश्किल वक्त में वेंजुएला की अवाम से हमदर्दी जो इज़हार करे तो, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुतासिरन सां गॾु आहे।

सुबई घर वजीर जाल सलंजार चयो आहे त प्रिया कुमारी जंहिं धाड़ियल वटि हुजण जो इतलाउ हो उहो मारिजी वियो आहे। कच्चे में ऑपरेशन जारी आहे पर अञा ताईं प्रिया कुमारी जो पतो पइजी न आहे सघियो। कहिड़ी हुकूमत चाहींदी त कंहिंजो ॿार अगवा हुजे ऐं इहो बाज़ियाब न थिए। रोहड़ी में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे जाल सलंजार चयो त हाणे कच्चे में ॾोहारियुनि जी दहशत न पर पुलिस जी दहशत आहे। योम आशूर ते समूरी सिंध में सिक्योरिटी जा फूल प्रूफ इंतज़ाम कया विया आहिनि।

पलाजे शहीदन के भेटा पेश कर लाए सिंध में आजादारी जारी रोहड़ी में बरामद थियल नव डालन वारो तारीखी मातवी जुलूस मंडू कबड़ जे पिण ता बरामद थियण बाद मंजिल तरफ रवा दवा गुरू अजय जाल सनजार रोहड़ी पहुंची जुलूस की सिक्योरिटी जो जायजो वरतो कराची में थियल नाए मुहर्रम जो मरकजी मातमी जुलूस मंजिल तरफ रवा दवा टट्टो सजावल बदीन टंडो मोहम्मद खान हैदराबाद भटियारी टंडो लयार मीरपुर खास थरपारकर उमरकोट सांगड़ नवाबशाह नौशेरो फिरोज जामशोरो दादू खैरपुर सखर घोटकी जैकबाद कश्मोर शिकारपुर लाड़काणो और कंबर जिले के नंढन वडन शहर में आजादारी जारी हर तरफ याव सेन जो सदाऊं सिक्योरिटी जा सख्त इंतजाम रोहड़ी में तारीखी शमा गुल मातम दौरान सा 68 जन सबब चार आजादार फोत थियल आजादार में ब कंदकोट ब पीर गोठ वासी शामिल कंदकोट वासी इमरान शेख नवीद शेख पीर गोठ वासी नमतुल्लाह उर्फ काली सुमरो नूर मोहम्मद लाड़क दम डेई छो इंतजामिया मूजिब पेर गर्मी सबब आजादार फोत थिया पाकिस्तान के अकेलो करण की कोशिश कंदड़ पान अकेला थी व्या पाकिस्तान दुनिया में अमन डींदड़ मुल्क बणजी व्यो है लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार है ता पाकिस्तान जिम्मेवार एटमी मुल्क है अमरीका ईरान जंग में अला पाकिस्तान का कम वरतो वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जंग के खात्मे लाए डी रात कम कयो हाने मामला दुरुस्त रुख में वजी रहा मुल्क भी माशी इस्तकाम तरफ वधी रो है आबना अरमुस के कें एक मुल्क की मिल्कियत तौर कबूल न कंदासी खिते में जटादार अमन के यकीनी बनाईंदासी अमरीका परडेही वजीर मार्को रूबियो है खिते में इतिहादियन की तरक्की खुशहाली चाहूं था 30 जून ते टेक्निकल टीमों बीहर ईरान से एटमी प्रोग्राम पाबंदियों बाबत गालू कंद आपना हुरमुस मां गुजरण लाए नओ रस्तो कबूल न हुंदो आपना हुरमुस मां गुजर ईरानी बहरिया जे ते कयल रस्तन ताई थी सके तो ईरान जे पासारन ने इनकलाब चयो है ता आपना हुरमुस मां गुजरण लाए नओ रस्तो कबूल न कयो वेंदो अड़ो को भी कदम खतरनाक साबित थी सके तो ईरानी पढ़े तर्जमान इस्माइल बकाई चयो है ता अमरीका ते थियल मफाहमत ते अमल करे

0: सिंध के मुख्तलिफ इलाक में तकरारन ता बजना कतल एडिशनल एसएचओ जो तशद्दुद थियल लाशत टंडो मस्ती वेझो कब्रिस्तान में वडड़न जे कब्रन ते दुआ घुरण लाए आयल नारी जा तुरियन में जेड़ो पीरसान अलीदार नारे जो कतल इमदार नारे जो जख्मी शेख तैयब कब्रिस्तान अंदर वडड़न जे कब्रन ते आयल नारी जा बिरादरी जी बिन धुरियन में जेड़ो थियो चक वेझो जतोई बिरादरी जी बिन धुरियन में पुरानी तकरार ता जेड़ो एक जणो कतल गोठ मजार कुर्सी में करीमण ए गुलाम नबी जतोई जी दुरियन में जेड़ो थियो फायरिंग जी डे वट दौरान गोलियों लगण सबब बशीर जतोई मारजी वियो मदे जी बरसा डखण थाने जे एडिशनल एसएचओ अब्दुल्ला मीराणी जो तशद्दुद थियल लाश हथ ड्यूटी डॉक्टर जो चवण आए त अहलकार जे जिस्म ते तशद्दुद जा निशान आहिन ज़हर सबब सदस मौत थियो आहे डखण पुलिस चयो आहे त वाकिए जी हर रुख खां जांच करे रहिया आहियूं। बलूचिस्तान जे डेरा मुराद जमाली में कतल थियल टिन जणनि जे वारिसन जो जैकबाद में एहतजाज कौमी शाहराह ते लाश रखी धरणो गुज़िरियल ॾींहुं जवाबदार इसरार रजवाणी पंहिंजी ज़ाल कूंज सस मदीहा ऐं सोहरे यासीन वगड़ खे क़तल कयो हो वारिसन जनाज़े नमाज़ अदा करण बाद टिन्ही मक़तूलनि जा लाश क़ौमी शाहराह ते रखी धरणो हयो मुज़ाहिन चयो त जवाबदार पंहिंजे साथियुनि जी मदद सां ज़ाल सस ऐं सोहरे खे बेगुनाह क़तल करे ज़ुल्म कयो आहे जवाबदार ख़िलाफ़
1: कार्रवाई
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: दिली अकीदत व एहतराम के साथ हदीए अशार बहुजूर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो कत्ले हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
4: ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल।
5: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: हदीया अशार बहुजूर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो। पूछते हो किस लिए हमसे कि क्या है करबला, अब हमारी इब्तिदा और इंतहा है करबला। ऐ वफादारो न भटको, देखो सूए करबला, हश्र तक एक साया शजरो वफा है करबला।
2: कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीन नियाज में।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: असांजी प्रिया संगरार जे मौला अली जे पेड़ में सभी लहलाईंदे उतां मिसी वई आहे। अॼु बि उहे ॾींहं आहिनि, उहे अखियुनि में गोरा आहिनि, उहे माउ पीउ प्रिया जा राजकुमार ऐं हुन जी संदी घरवारी अॼु बि उहे वाटू निहारे थी, मौला अली खे ॿाॾाए थी त हे मौला अली जंहिं पेड़ मां मुंहिंजी न्याणी वई आहे उहा असांजी न्याणी इन्हीअ पिण ताईं मिलंदी। अॼु बि हुननि जो इहो ई यकीन आहे।
2: संगरार जी मासूम प्रिया कुमारी खे ज़मीन घी वई या आसमान खाई वियो। 5 साल अॻु संगरार में योम आशूर ते सतील विराईंदे गुम थियल मासूम प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी भी लाइ हुकूमत जो हिकु बि वाइदो वफ़ा न थियो। ॿिनि सूबाई हुकूमतनि दौरान 4 IGs तब्दील थिया, सभई सखड़ियूं दवाऊं ऐं ठला आसरा ॾींदा रहिया, अमली तौर कुझु बि न थियो। रोहड़ी में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई घरु वज़ीर जालस अंजार चयो आहे त प्रिया कुमारी जंहिं धाड़ियल वटि हुजण जो इतला हो उहो मारिजी वियो आहे। कच्चे में ऑपरेशन जारी आहे पर अञा ताईं प्रिया कुमारी जो पतो पइजी न आहे सघियो। टेडी हुकूमत चाहींदी त कंहिं जो ॿार अगवा हुजे ऐं इहो बाज़ियाब न थिए। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले तबाही मचाए छॾी, समय इमारतूं पट पोतियुनि जो अघु वधी 167 थी वियो। 10,000 खां वधीक माण्हू मलबे हेठां दबियल हुअण जो ख़दशो। किरियल इमारतनि जो मलबो हटाइण वारो ऑपरेशन जारी, क्रॉकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बि बंदि कयो वियो। वेनेज़ुएला में हिकु ॿिए पुठियां आयल ज़लज़ले जी ॿिनि झटकनि वॾियुनि इमारतनि खे मिटीअ जे ढेर

करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ सिंध में आज़ादारी जारी। टोड़ी मां बरामद थियल नव डालन वारो तारीख़ी मातमी जुलूस मुंडू खबड़ जे पिड़ तां बरामद थियण बाद मंजिल तरफ रवाना हुआ। करूअ जे जालसर जा रोड़ी पहुची जुलूस थी सिक्योरिटी जो जाइज़ो वरितो। कराची में कल नए मुहर्रम जो मरकज़ी मातमी जुलूस मंजिल तरफ रवाना हुआ। टट्टो सजावल बदीन टंडो मोहम्मद खान हैदराबाद भटियारी टंडो लयाड मीरपुर खास थरपारकर उमरकोट सांगर नवाबशाह नौशर अफरोज जामशरो दादू खैरपुर सक्कर बोटकी जैकबाद कश्मोर शिकारपुर लाड़काणो कंबर जिले के नंडन वडन शहरों में आज़ादारी जारी। हर तरफ या हुसैन जो सदाऊं सिक्योरिटी जा सख्त इंतजाम।

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: हदीया अशार बहुजूर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो। पूछते हो किस लिए हमसे कि क्या है करबला, अब हमारी इब्तिदा और इंतहा है करबला। ऐ वफादारो न भटको, देखो सूए करबला, हश्र तक एक साया शजरो वफा है करबला।
2: कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीन ने आज।

बोल अली बोल। क्या खबर किसको पता कितना है अनमोल अली। बेखबर अक्ल के मीजान पे मत तौल अली। अपनी सांसों में वजीफों में तू बस बोल अली। बैठ मौला के फकीरों में जरा बोल अली बोल अली बोल अली बोल।

0: नथा ॿुधाइण किथे आहे, ख़बर त सॼी असम क्रिया किथे आहे। माना रिकवर नथी मिले असांखे पंहिंजी ॼाण ईंदी रियासत जी ज़िमेवारी।
1: अॼु खां 5 साल अॻु असांजी प्रिया संगरार जे मौला अली जे पेड़ में सबील हलाईंदे उतां मिसी वई आहे। अॼु बि उहे ॾींहं आहिनि, उहे अखियुनि में गोरा आहिनि, उहे माउ पीउ प्रिया जा राजकुमार ऐं हुन जी संदी घरवारी अॼु बि उहे अॼु बि हुननि जो इहो ई यकीन आहे।
2: संगरार जे मासूम प्रिया कुमारी खे ज़मीन ॾी वई या आसमान खाई वियो? 5 साल अॻु संगरार में योम आशूर ते सबील विराईंदे गुम थियल मासूम प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ हुकूमत जो हिकु बि वादो वफ़ा न थियो। ॿियनि सूबाई हुकूमतनि दौरान 4 IGs तब्दील थिया, सभई सखड़ियूं दवाऊं ऐं टला आसरा ॾींदा रहिया, अमली तौर कुझु बि न थियो। रोहड़ी में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई गर्वजार चयो आहे त प्रिया कुमारी जंहिं धाड़ियल वटि हुजण जो इतला हो उहो मारिजी वियो आहे। कच्चे में ऑपरेशन जारी आहे पर अञा ताईं प्रिया कुमारी जो पतो पइजी नाहे सघियो। कहिड़ी हुकूमत चाहींदी त कंहिंजो ॿार अगवा हुजे ऐं इहो वाजियाब न थिए? वेनेज़ुएला में ज़िलज़िले तबाही मचाई छॾी, 7 इमारतूं पट फोटियुनि जो अंगु वधी 164 थी वियो, 1000 खां वधीक ज़ख़्मी, 10000 खां वधीक माण्हू मलबे हेठां दबियल हुअण जो ख़दशो। किरियल इमारतनि जो मलबो हटाइण वारो ऑपरेशन जारी, काकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बि बंदि कयो वियो। वेनेज़ुएला में हिक ॿिए पुठियां आयल ज़लज़ले जे ॿिनि झटकनि वॾियुनि इमारतनि खे मिटीअ जे ढेर में तब्दील करे छॾियो। ज़लज़ले जी शिदत 7.2 ऐं 7.5 जी रिकॉर्ड कई वई। वेनेज़ुएला जी वक़्ती सदर मुल्क में एमरजेंसी लागू करे छॾी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे मूजिब वेनेज़ुएला में ज़लज़ले सबबि पोतियुनि जो अंगु 1,00,000 ताईं वञी सघे थो। अमरीकी सदर पारां इदारनि खे वेनेज़ुएला जी तकड़ी मदद करण जी हिदायत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां वेनेज़ुएला में ज़लज़ले सबबि जानी ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान मुश्किल वक़्त में वेनेज़ुएला जी अवाम सां हमदर्दी जो इज़हार करे थो। मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान मुतासिरनि सां गॾु आहे। पाकिस्तान खे अकेलो करण जी कोशिश कंदड़ पाण अकेला थी विया आहिनि। पाकिस्तान दुनिया में अमन ॾींदड़ मुल्क बणिजी वियो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म साहब गार चयो आहे त पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अलाह पाकिस्तान खां कमु वरितो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहुं राति कमु कयो। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि, मुल्क बि मुआशी इस्तेकाम तरफ़ वधी रहियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: नजराने अकीदत बहुजूर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। अभी इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन।
2: ऐ करबला की खाक इस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशाए बतूल।
3: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

0: असली ग्लो हर डींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: दिली अकीदत तो एहतराम के साथ हदीए अशार बहुजूर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो। मुस्तफा नूर हैं, उस नूर में शामिल हैं हुसैन, इल्म सरकार है, तालीम का हासिल है हुसैन, जिसमें धड़कन है वो दिल है हुसैन, एक लम्हा ही सही सदियों के मकाबिल है हुसैन, नाम इस्लाम का इस नाम से ताबिंदा है, ऐ अजल देख हुसैन इब्ने अली जिंदा है।
2: आमा बुधी रया आयो जी एफ एम नेटवर्क थे महरमुल हराम जी खुसूसी ट्रांसमिशन।

कलंदरों के मजारों को चूमने वालों, कलंदरों की सदा भी कभी सुनो, क्या है सदाए मलंगे अली, सदाए फकीर अली।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में।

वेंसुएला में जलजले तबाही मचाए छी सवे इमारतू पट फोतियन जंग वी 164 थी वो 1000 का वधिक जख्मी 9000 का वधिक मानू मलबे हेठा दबियल होण जो खदशो किरियल इमारतन जो मलबो हटाने वो ऑपरेशन जारी क्रोकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद कर वो वेंसुएला में एक बे पुठिया आयल जलजले के बिन झटकन वडियन इमारतन के मिट्टी के ढेर में तब्दील कर छो जलजले की शिदत 7.5 / 7.5 / 5 रिकॉर्ड कई वही वेंसुएला के वक्ती सदर मुल्क में इमरजेंसी लागू कर छी अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे मूजिब वेंसुएला में जलजले सबब फोतियन जंग 1 लख ताई वनी सके तो अमरीकी सदर पारा इदारन के वेंसुएला की तकड़ी मदद करने की हिदायत सदर आसिफ अली सरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा वेंसुएला में जलसले सबब जानी ए माली नुकसान के अफसोस जो इजहार सदर आसिफ अली सरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहिए तो पाकिस्तान मुश्किल वक्त में वेंसुएला की अवाम से हमदर्दी जो इजहार करे तो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुतासर से गड है पाकिस्तान के अकेलो करण की कोशिश कंदड़ पान अकेला थी व्या पाकिस्तान दुनिया में अमन डींदड़ मुल्क बणजी व्यो है लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो है तो पाकिस्तान जिम्मेवार

0: मिल्कियत तौर कबूल न कंदासीं। खिते में जटादार अमन खे यकीनी बणाईंदासीं। अमरीकी परडेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त खिते में इतिहादियुनि जी तरक़ी ऐं खुशहाली चाहियूं था। 30 जून ते टेक्निकल टीमूं बीहर ईरान सां एटमी प्रोग्राम ऐं पाबंदियुनि बाबति ॻाल्हियूं कंदियूं। आबनाए हुर्मुस मां गुज़र लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो। आबनाए हुर्मुस मां गुज़र ईरानी बहरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो। ईरान जे पासदार इंकलाब चयो आहे त आबनाए हुर्मुस मां गुज़र लाइ नओं रस्तो क़बूल न कयो वेंदो। अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी परडेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीका तय थियल मुफ़ाहम ते अमल करे। इसराइली फ़ौज जूं लबनान में जंगबंदी जूं भॼकड़ियूं जारी। ॾखण लबनान में गाड़ी ते इसराइली फ़ौज जे ड्रोन हमले में 2 ॼणा मारिजी विया। परडेही ख़बरूं इदारे मूजिबि गुज़िरियल ॾींहुं बि लबनान में इसराइली ड्रोन हमले में 2 ॼणा मारिजी विया हुआ। ईरानी पासदारनि इंकलाब कुदस फोर्स जे सरबराह इस्माइल कानी ख़बरदार कंदे चयो आहे त इसराइली फ़ौज खे लबनान जे समूरनि इलाइक़नि मां निकिरणो पवंदो। लबनानी सरज़मीन इस्तक़ामत ऐं मज़ाहमत जो मैदान आहे। इसराइल पाण मुरादो न निकितो त उहो ज़िलत ऐं शिकस्त सबबि भॼी वेंदो।
1: जो डाकू किसके लिए था कि उसके पास शायद हो, वो भी डाकू मारा गया। गवर्नमेंट कब चाहेगी कि किसी का बच्चा गुम हो और गवर्नमेंट उसको बाजार ना कर। बच्ची का अभी तक पता नहीं चल रहा।
2: न था बुधाने किथे फ्री आ, मन खबर तो सजी असन फ्री आ किथे आ, मन रिकवर न थी मिले असांखे, पंहिंजी न्याणी मिले असांखे कहिड़ी ख़बर कीअं वटि आहे किथे आहे। अञा ताईं असां आफ़िस में वेठा हूंदा, असांजी न्याणी ईंदी ऐं कॾहिं ईंदी, रियासत जी ज़िमेवारी आहे असांखे न्याणी रिकवर कराए ॾियनि।
3: अॼु खां 5 साल अॻु असांजी प्रिया संगरार जे मौला अली जे पेड़ में सबील हलाईंदे उतां मिस थी वई आहे।
0: संगरार जी मासूम प्रिया कुमारी खे ज़मीन गिह वई या आसमान खाई वियो। 5 साल अॻु संगरार में योम आशूर ते सबील विरहाईंदे गुम थियल मासूम प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ हुकूमत जो हिकु बि वादो वफ़ा न थियो। ॿिनि सूबाई हुकूमतनि दौरान 4 IGs तब्दील थिया। सभई सखड़ियूं दावाऊं ऐं ठल आसरा ॾींदा रहिया, अमली तौर कुझु बि न थियो। रोहड़ी में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई घर वज़ीर ज़ियाल हसन अंजार चयो आहे त प्रिया कुमारी जंहिं धाड़ियल वटि हुजण जो इतला हो उहो मारिजी वियो आहे। कच्छ में ऑपरेशन जारी आहे पर अञा ताईं प्रिया कुमारी जो पतो पइजी न सघियो। कहिड़ी हुकूमत चाहींदी त कंहिंजो ॿार अगवा हुजे ऐं उहो बाज़ियाब न थिए।
4: सिंध प्रिया कुमारी बाज़ियाब न आहे छो भला अगवा थियल मासूम निगरी प्रिया कुमारी खे प्रिया कुमारी जे रहंदड़ हिंदू बिरादरी सां सिंध में रहंदड़ हिंदू बिरादरी जी नियाणियुनि खे सिंध में रहंदड़ हिंदू बिरादरी जी नियाणियुनि खे सिंध में
0: संगरार मां अगवा।
5: Click a brain has been completely rebuilt. Meet Brain 2. Now work is easy. All I have to do.
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: दिली अकीदत तो एहतराम के साथ हदीए अशार बहुजूर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो। आता है मुहर्रम का जो हर साल महीना, सिखलाता है इखलास व मोहब्बत का करीना। ज़ुल्मत गहे बातिल में भी मिल जाती है मंजिल, शब्बीर की गर फिक्र से हो पुर नूर जो सीना।
8: हुसैन हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
9: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।

0: और सुनो।
1: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Gulhai aqeedat o ehtram bahuzur Khalifatul Muslimin Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Safar taweel hai, rahe nijat choti hai. Bahut hai zikr Ali aur hayat choti hai. अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूं, अली है नाम बड़ा और कायनात छोटी है।
4: कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीन नियाज में।